अनक उहीरे एक सुमार रहाओ, सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जतकत पेखो तता साथे, चरण कमल मेरे प्राण आधार, समराथ्या था बड़ा प्रम मेरा, कड़कड़ अंतर साहेब नेरा, ताकी सरण आसर प्रभ नानक, जाका अंतना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा, उल्टी रे माने उल्टी रे, साग स्यों कर उल्टी रे, झूठै की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग ना छुटकी रे रहाओ, ज्यों काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसे कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिगुटी रे, मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे, जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुलसी रे, राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ, गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ, रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ, रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ, दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करै, सीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरै रहाओ, मद माया कै पयो बावरो, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उदर भरै, सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान तरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काय सरै, देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, आरफुन गृह की नार, रहाओ तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आद करी को न रख, करते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते हो ते उधार, देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, रहाओ मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत, अंतकाल संगी नह को, ए अचर जह रीत, मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हार्यो नीत, नानक पौजल पार पर, जौ गावै प्रभ के गीत, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद, राग बिहागड़ा चौप दे महला पंजवा कर दूजा, दूतन संगरिया भयंगन बसरिया, अन क्यों परिया तौ मैं हर हर करिया, तौ सुख सहजरिया रहाओ, मिथन मोहरिया अनको मेरिया, विच घूमन किरिया, सगल पटरिया बिरख एकत्रिया, बहु बंदह परिया थिरसाज सफरिया, जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिहागड़ा महला नावा, हर की गतने को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक सियाने रहाओ, छिन में राव रंक कौ करई, राव रंक कर डारे,
रीते परे परे सक नावै यह ता को व्यवहारे अपनी माया आप सारी आपै देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहै न्यारा अगंत अपार अलख निरंजन जेहे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायो राग बिहागड़ा।

ज्ञान अंजनो नाम बिंजनो पय सगल सिंगारा, नानक पयम पै संत जम पै मेल कंत हमारा। लाख उलाहने मोहे हर जब लगन है मिले राम, मिलन को करो अपाव किश हमारा न चले राम। चल चित बेत्या नित प्रे बेनो कवन विधि ना तीजी है, खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है। आसा प्यासी रहन दिन यार रह ना सकिया एक तले, नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्शना पाई है राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाई है राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोई है सहज सोई है प्रभ पलक पेखत नम निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाई है, नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्स दिखाई है। संतन कह प्रसाद हर हर पाया राम, इश्पुनी मन सांत तप्त बुझाया राम। सफला सोजन सरहणे सुहावी अंत मंगल रसकना, प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन कवन रसना गुणपना। प्रम लोभ मोह बेकार थाके मिल सखी मंगल गाया, नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अंधन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लगे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोबिंद कोय नाही तुझ बिना, समराथिया गाथिया पार पूर्ण जियो तन तन तुम मना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच जाना, बिनवंत नानक सरन तेरी रख ले ओ आवन जाना। साधे सरनी पाई है हर जियो गुण गाव है हर नीता राम। तूर भगतन की मंतन लगो हर जियो सब पद पुनीता राम। पथता पुनीता होहे तिन संग जिन बिदाता पाया, नाम राते जी दाते नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद्ध नव निध हर जप जिनी आत्म जीता, बिनवंत नानक वडभाग पाईऐ साध साजन मीता। जिनी सच वणंजिया हर जियो से पूरे सहा राम, बहुत खजाना तिन पह हर जियो। हर कीर्तन लहा राम काम क्रोध ना लो व्यापै, जो जन प्रभ स्यो रातिया। एक जन एक मन राम कै रंग मातिया, लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा। बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सच्चे साहा, नानक सोई सिमरिए हर जियो। जा की कल तारी राम गुरमुख मनो न विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांत आई मिलिया पुरख्या पारी, बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छपुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार, सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रह निड़िए। प्रे प्रेम लगा कर दुख नींदड़िए, परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो। नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी। गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा, बिनवंत नानक तार कृपा रहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे, मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे। हर भगत पाई है।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तप्त न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगै, जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो, अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संतै संग मिलै जप पूर्ण कामा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसरै। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जम भग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तब तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम, पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा, बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइय। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुत कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध्या पार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक सरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा संत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चल बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम। पूजा गह काड लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले। महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण पर बीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखे नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू सब सदा।

जो हर प्रभाव है सो थी सब करन तेरा कराया सा लाहे हो हर सबना ते वड्डा जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नारक ज्ञानी जगजीता जगजीता सब कोए नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतों पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए, विणकर मैं कहना ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जै। आप निर्विरत आप निर्विरती, आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जै, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए, मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी, साखसम पाए थाए, नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर पंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दो कटी है, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सा लाहे नर जै, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे कल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा करहै चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाणे। आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवनहार, क्रोध कटोरी।

पहला काया लाहन आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल इत मद पीता नानका बहुते खटिया बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खड़ दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिर बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुर स्वरूप सियाणी आपना चोज कर वेख आपे आपे सबना जिया कह जानी श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै।

संध्या नानक संध्या करे मन मुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए। पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दस अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया। आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया। आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देह। महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल। पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए नाम। आप दयाल हुए पौखंडनो आप करे सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगह पाए मान। जिस दी पैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए। महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारे होए कै सब समाले हो। साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो। सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रखसी अगे हर स्यों केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए। जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनो तिल ना तमाए। श्लोक महला तीजा मानस परिया आणिया मानस परिया आए जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए। अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीतै खसम विसरै दरगह मिलै सजाए। झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए नानक नदरी सब सच मद पाई है। सतगुर मिलै जिसे आए सदा साहेब कै रंग रहै महली पावै थाओ। महला तीजा एहो जगत जीवत मरै जां इसनो सोजी होए जां तिन सवालिया तां सब रहया जगाए तां सिद्ध होए। नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मिलै सोए गुर प्रसाद जीवत मरै ता फिर मरण ना होए। पौड़ी जिसदा कीता सब किश होवै जिसनो परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावै सब मोहताजी कढ़ै तेरी। जे तुदनो सा लाहे सो सब किश पावै जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहो सच्चा वणजारा। जिन वखर लद्या हर नाम तन तेरी सब तिसैनो सा लाहो संतो जिन दूजे भाव की मार विडारी ढेरी। सलोक कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए
ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ

आपे वट परवार नानक मंगै दान हर संता रे नार होर दा तार ना सुजई तू देवन हार सुध एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपना तिन भावै सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामै रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बरहार जाओ मैं की नजर ना आवही वसै हबियां नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वडंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे तां भी सहोरावन जाए मेरा कंतरी सालू की तन्यवरा रावे जी राओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुला अखां अमड़ी आस तैं सह

कार्य अपने तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लगत रह संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जुगे अंतर, चूकै मोह गुबारा, सतगुर सेवा ते निस्तारा, गुरमुख तरह संसारा, साचै नर ते बैरागी, पाए मोख द्वारा, एको सच वरतै सब अंतर, सबना करे प्रतपाला, नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना, सबना दीवान दयाला। वडंस महला तीजा। गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान, गुरमुख साचै लगै ध्यान, गुरमुख मन मेरे नाम संभाल, सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ। गुरमुख जात पात सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवार साधार। वडंस महला तीजा। रसना हर साध लगी सहि सुभाए, मन तृप्तिया हर नाम ते आए, सदा सुख साचै शब्द विचारी, अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ। अखी संतोखियां एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए, देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए, नाम परमल हृदय रया समाए, नानक मस्तक जिसवड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वडहंस महला तीजा। पूरे गुरते नाम पाया जाए, सच्चा शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ। गुर कै शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसै मन आए, परमे पूला फिरै संसार, मर जन्म जम करे खुवार, नानक सेवड पागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

नानक गरीब राखो हर मेरे। वढांस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभाणी। हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो इयाणी, जो पिर भावे सा सुहागण। साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ, मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा। तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा, जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण। से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण, नित सुहागण।

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण पर्यो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर मान कलाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी ऊठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वढ़ंस महला पंजवा, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ। जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हावा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब।

तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना।

पूरे। जे सौ खेल खिलाइए बालक रह ना सकै बिन खीरे। मेरा अंतर पुख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे। मेरा मंत्र प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओ जी की मेरी सब दिन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रक जल कहो बिललाता। हाँ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण कहो रख लेता। हाँ पही उड़ीनी कंत कहो अमाली सो पिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितै ना लेखा। एहो कापड़ ताना सुखा वही कर ना सको हों वेसा। जिनी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन पिर काम न आए। जा सह बात न पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सौ रिया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तोमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखां सुख पाया अमाली पिर सर्व रहा पर पूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन सच शब्द विचारा अंदन सच सलाहना तन तन वड पग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रह ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना साचा वापारा आंदन लाहा सच नाम तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्से तिस मिले। मैली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जोनी मूल ना पाहे। गुरमुख दर साचा सचिया रह साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए। सच्चा थान सच सलाहना सदगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच जित सच्चे नाल प्यार। सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले आपे ले मिलाए। ज्यो पावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दे दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे। इंद्री व्याप रही अधकाई काम क्रोध नित संतावे। वाह वाह सहजे गुण रवीजे राम नाम इस युग में दुलभ है। गुरमत हर रस पीजे रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे। ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पहे हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ लिया साची वड़ियाई। बिकसे अमृत पहे गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पहे अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए। मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया। मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महला

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करण।

सर्वे समाणा आप तू है, उपाय तंदे लाइया। एक तुझी की है राजे, एक ना पिख पवाइया। लोभ मोह तुझ किया मीठा, एक भरम भुलाना। सदा दया करो अपनी, ता नाम खाना। नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना। दू गया सुख आए समाणा, गावन सुर नर सुगड़ सुजाना। सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेतै नाही, ऐला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेतै मूले, जो आया ते जाना। नाम तेरा सदा साचा, सोए मैं मन पाना। तेरा भक्त सुहावा, अमृत तेरी बाणी। सेवक सेवै पाओ कर, लागा साओ प्राणी। साओ प्राणी तिन्ना लागा, जिन्नी अमृत पाया। नाम तेरा जोए राते, नित चढ़ै सुवाया। एक कर्म धर्म ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी। भक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हाँ बलिहारी साचे नावै, राज तेरा कबो ना जावै। राजू ता तेरा सदा निश्चल, एहो कबो ना जावै। चाकर ता तेरा सोए होवै, जोए सहि समावै। दुश्मन ता दुख ना लगै मूले, पाप नेड़ ना आवे। हाँ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावै। जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे, कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे। जपै ता साचा।

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जामया बुझावै दुख भुख संसार किए, सासै हो चुकावै। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप आप संदूरै श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी बिरवंत नानक दास हरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वढ़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिरकै रंग रती मुइये सोभावंती नारे सच्चै शब्द मिल रहिये मुइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चै पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचा साहे सवारी निर्गुण मंतड़िए पिर देख अधूरे राम गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे नानक कामण सा पिर भावै शब्दे रह हदूरे सुहागणी जाए पुछ।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मन मुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाँ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जनवट पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मन मुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एतवा पार लाए रतन पदार्थ बन जीए जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाण है बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी ज्यो तिसदी वड्याई राम ज्यो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी अपनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागे रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमें मैल भरिजय पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करै पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बेदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा। अंदन सह समाद हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया।

हर दयाल शरण आया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे, हर तारो कृपा कर कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

गुण अवगुण मेरा किस ना विचारिया, बख्शली आखिर माही। नौनिद पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वार कर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सलोक क्या सुने दे कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनी अरते प्रवान, जो सुने दे सच धनी संत। तिन कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया, राम से सहे सुहेले जिन हर हर रसना भणिया। राम से सहे सुहेले गुणे अमोले, जगते उदारने आए, पै बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंगाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया, कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ सरवनी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझे मूकनी, नानक से अखड़िया बयान, जिनी डसन दो मां पिरी संत। जिनी हर प्रभ डिठा तिन कुर्बाने, राम से साची दरगे पाने। राम ठाकुर माने से प्रधाने, हर से ती रंग राते, हर रस अगाए सही समाए, कट कट रमैया जाते। सही सज्जन संत से सुखिए, ठाकुर अपने पाने, कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सतगुरु बाणे। सलोक देह अंधारी अंध, सुनी ना विहुनिया, नानक सफल जनम, जय कट उठा सच धनी संत। तिन खन्नी है वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा, राम जन चाखिया गाने, हर हर अमृत मीठा। राम हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्यो उठा सुख पए, दुख नाश परम विनाश तंते, जप जगदीश ईसे जय जय। मोह रहत बेकार थाके, पंच ते संग तूटा, कहो नानक तन खनिए वन्या, जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। सलोक जो लोड़ींदे राम, सेवक से ही कंडिया, नानक जाने सत साई संत ना बाहरा। संत मिल जल जलै खटाना, राम संग ज्योति ज्योत मिलाना। राम समाए पूर्ण पुरख करते, आपे आपे जानी है, तह सुन सह समाध लागी, एक एक वखाणी है। आप भुगता आप मुगता, आपे आप वखाना, नानक भ्रम पै गुण बिनासे, मिल जल जलै खटाना। वडहंस महला पंजवा, प्रभ करण कारण समरथा। राम रख जगत सगल दे हथा, राम समरथ सरना जोग स्वामी, कृपा निध सुखदाता, हाँ कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता। वर्ण चिहन न जाए लखिया, कथन ते अकथा, बिनवंत नानक सुनो बिनती, प्रभ करण कारण समरथा। एह जी तेरे तू करता, राम प्रभ दुख दर्द भ्रम हरता। राम भ्रम दुख दर्द निवार, खिन मैं रख ले हो दीन दयाला, मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो सरण आवै गुण निधान पावै, सो बहुड़ जन्म ना मरता, बिनवंत नानक दास तेरा, सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर त्याई है राम, मन इच्छा अड़ा फल पाई है। राम मन इच्छ पाई है प्रभ त्याई है, मिटे जम के त्रासा, गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा। तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिरमंत नानक दिन सरैणी, सदा हर हर त्याई है। दर वाजे अनहद वाजे राम, घट घट हर गोविंद गाजे। राम गोविंद गाजे सदा बिराजे, अगमा गोचरी उच्चा, गुण बेअंत किश कहण ना जाई, कोय ना सकै पहुचा। आप यो पाए आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख नाम भगती, दर वजे अनहद वाजे। राग वढ़ंस महला पहला, कर पंजवा अलाहणिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद। तन सरंदा सच्चा पातशाह,
ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਆੜਾ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂਦਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਿਨ ਜਗ ਤੰਦੈ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਐਥੇ ਤੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਾ ਕਾਹੇ ਗਰਬ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਆਗੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਮੂਲੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਆ ਵਿਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਆ ਲੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਚੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖਿਆ ਪਾਰੋ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਟਾਹੇ ਟਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਾਲੇ ਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰੋ ਗਾਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਰੋਵੈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੇ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਉਹ ਤਨ ਏ ਵੈ ਖੋਵੈ ਐਥੇ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂੜ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੋ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨਹੀ ਲੀਆ ਹੋਵਾ ਤਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਤਿਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਹਾ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਕੋਏ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੋ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਭੇਟੈ ਸਿਉਂ ਜਾਵੋ

है, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिया, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिसो चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिर जिनी मेदनी, तुद सिर जी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सचन वेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करण हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़े नाम विसारिया, बूढ़ड़े क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिख लद्या, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोड़ हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मर माइये, महल रुनी दरबारे, रवो कंत महलियो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानिया, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हाँ रे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सातन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंदे है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांदी, कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਬਾ ਰੋਵੈ ਰਵੈ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਮਿਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾ ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁੱਠੜੀ ਤੰਦੜਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਵਾ ਤੰਦਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲ ਨਾ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਤ ਸੰਸਾਰੋ ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਮੈ ਪੂਲੈ ਝੂਠ ਮੁੱਠੀ ਅੰਕਾਰੋ ਆਪੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਇਹੋ ਜਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋ ਵਾ ਸੱਚਾ ਕਰ ਸੱਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰੋ ਵਾ ਕੂੜ ਲੱਭ ਜਾਂ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਸੀ ਅੱਗੇ ਲਹਿ ਨਾ ਠਾਓ ਅੰਤਰ ਆਓ ਨਾ ਬੈਸੋ ਕਹੀਐ ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਕਰ ਕਾਓ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਡਾ ਵੇਛੋੜਾ ਬਿਨਸੈ ਜਗ ਸਵਾਏ ਲੱਭ ਤੰਦੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਖੜਾਰੂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਆਵੋ ਭਾਈ ਹੋ ਗਲ ਮਿਲੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆਂ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਆਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵੋ ਮਿਲਿਆ ਕਾ

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ियारे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओनो या

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै औगुणे आरी झूठी, पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुलै रुलाया, काम ना आया,

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे। मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे। सचड़ा आप जगत पाया गुर बिन कोर अंधारो। आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहा, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जे बा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुर लीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एकत रूप फिर प्रसन्ना। कोई न किसी जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ले। साचे शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही रचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाखिया पारिया गामिया गोचर। ना तिस काल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जन तो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरियै रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, अठसठ तीर्थ मजना। गुरदर्श प्राप्त होए,
ज्यों जोगी जत बाहरा तप नाही सत संतोख त्यों नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाईऐ हर पाईऐ सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रवर आ बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी है पी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिलै ता गुरमत पाई है सागत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अवसर की सार न जाने फिर की चबुड़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामों काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना सके की पर कर जोहन लागा घर दर राखै जे रस चाखै जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोबाने फिर पछता है अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख ना ले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनुरागा हर रसी उपरे अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जा साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्त हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाई है गुर मिले जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जिया सर लेख तो राहू बिन लेखै नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेवो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया अहमत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरे सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाई है निजकर वासा होई जियो जन्म मरण

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करै प्रभ पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन भाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाणै मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई।

हाँ मेरा जग पलच रहया भाई कोई ना किसी केरा गुरमुख महल पाए न गुण गावन निज कर होए बसेरा ऐथे बुझै सो अपछाणे हर प्रभ है तिसकेरा सतगुर सदा दयाल है भाई मिण भागा क्या पाई एक नजर कर वेखै सब उपर जिहा पाओ तिहा फल पाई है नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै एआणी मनमुख फिरै सदा दुख पावै डू मोए विण पाणी भाई रे सदा रहो सरनाई अपनी नजर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुर ते आप पछाता शब्द सच्चै विचारा हिरदय जग जीवन सद वसिया तज काम क्रोध हंकारा सदा हजूर रव्या सब ठाई हिरदय नाम या पारा जो जुग बाणी शब्द पछाणी नाओ मीठा मनै प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावै गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोई ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पछाणै हर रस रसन रसाई जप तप संजम सब गुर ते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समालै से जन सोहन दरसा चै पत पाई सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई जीवत मरै ता बूझ पाए सो गुरु।

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सै सुमानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटणु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

बन बकरी सी हो हटाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वरतदा प्यारा, पै अग्न सकै जलाया, आपे मर जीवाइंदा प्यारा, सह लैंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे घर लाया, जो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्टियो पाइंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान, आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत

कोई प्रभ जाना जिसनो दे सो पाए वस्तानूप अतगमा गोचर गुरपूरा लख लखाए जिन ए चाखी सोई जाण गूंगे की मठियाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखै लुकाई सब किश तेरा तू अंतरजामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करै सो पाए जन नानक अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवां कर पहला ते तुके एको अंकार सतगुर प्रसाद किस हों जाची किस आरादी जा सब को कीता होसी जो जो दिसै वड़ा वडेरा सो सो खाकूरल सी निरपौ निरंकार पव खंडनो सब सुख नमने देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदात है निखुट न कभी जाई अनंद पया सुख सह सुमाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिन कहो कृपाल होवा प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्ब जिया दयाला सब किश कीता तेरा वरत क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा जो पिता पूत कृपाला सोरठ महला पंजवा कर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हिरदय तार साचा साहेब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए शार साध संगत को वारिया पाई जिन एक अंकार आधार सोई साचा राधना पाई जिसते सब किश होए गुरपूरै जान आया पाई तिस बिन अवर ना कोए रहाओ नाम होने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी विण सच सोच ना पाईए पाई साचा अगमतनी आमन जान न चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नाम एक कणी सिमरत शास्त्र सोधिया पाई विण सतगुर परम ना जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सोधिया पाई विण सतगुर नाही जाए वडभागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आए सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई तिस प्राप्त होए कोट मदे जन पाईए पाई विरला कोई कोए नानक रता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए सोरठ

बीच बिखाई माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहो उठ चरना न बिसरै मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय ना आई प्राण पत त्याग अंतु रचिया उर ज्यों संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुध पाई साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम सने ही रहाओ तीन संगियां कर देही कीनी जल कूकर पस में ही होए आमरो ग्रे मैं बैठा करण कारण बिसरो ही। अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रह नेही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वट भागी मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेट्यो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेखै सब सुखिया रोगी कै भाणै सब रोगी करण करावन हार स्वामी अपना हाथ संजोगी।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा। अज्ञान अंधेरै सूझस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै। जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिनो अवर ना दाता बिया। जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहा सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

हर जन को ही सुहावे, पेख निकट कर सेवा सतगुरु, हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ। अमलन स्यो अमली लपटायो, पूमन पूम प्यारी, खीर संग बार कह लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम यूजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना। तुम करो भला हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम रखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम एह हवाला, राख संतन कै पाछे। सोरठ महला पंजवा, कर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान देह प्रभ पान खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगमे अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओढ़ सताणी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो ब्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती समगरी।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई।

जो कुछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु ऐशानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, हम मैं बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़ दे मैं, परदारा संग फाकै। चित्र गुबत जब लेखा मांगे, तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओटना काई। काढ़ लिहो संसार सागर मैं, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म होवा सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी। जप अंत करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो पाई। साध संग सदा सुख पाई है, हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनों कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, गुरचरणी मन लागा। गुण गावते अचुत अविनाशी, अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। आदि अंत मद नानक कहो, सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा। बिनसै मोह मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी। संतो यह बतावो कारी, जित हों मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी। पेख्यो प्रभ जी अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुरमिल रोग बेदारी। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया। ऊंच नीच मैं ज्योत समाणी, कट कट माधव जिया। संतो कट कट रया समायो, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व मैं। जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निधान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। सर्ब निवासी सदा अलेपा, समय रया समायो। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निध पावै। बहुर ना तृष्णा भुखी, जा को नाम लै तू सुखी। सास सास त्यावो ठाकर कहो, मन तन जिया रे मुखी रहाओ। सांत पावै होवै मन शीतल, अग्न ना अंतर दुखी। गुर नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थल तेरे भवन रुखी। सोरठ महला पंजवां, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। इन ते आप छड़ावो, एह पीतर ते इनको डारो। आपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो। हर जन मंगल गावो रहाओ। बिसर नाही कबहू ही ए ते, एह विद मन मैं पावो। गुरपूरा भेट्यो वडभागी, जन नानक कतै ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जा कै सिमरण सब कछ पाई है। बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो। जो समय रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला। साध संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण हो वै काला रहाओ। सार संभालै नित प्रतपालै, प्रेम सहित गल लावै। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवां,
अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंश है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन पेट तो होत निहाला हर का नाम विचारै।

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश विनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई कीनी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया। होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी। हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ। हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जमका फासा, मन पूर्ण होई आसा। जै पेखा तै सोई, हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे। निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा। ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी शरण सचे की ताकी। परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन हो

गुर का शब्द भयो साखी तन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा। चप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवां विच करता पुरख खलोवा वाल ना विंगा होवा। मज्जन गुरे आंदा रासे जप हर हर किल विखनासे। संतो रामदास सरोवर निका जो नावै सो कुल तरावै। उदार हुआ है जी का रहाओ जय जयकार जग गावै। मन चिंदे अड़े फल पावै सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावै सो जन परम गत पावै। मरे न आवै जाई हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जानै जिस दयाल होए भगवानै। बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवां पार ब्रह्म निबाही पूरी काई बात न रहिया ऊरी। गुर चरण लाए निस्तारे हर हर नाम सुमारे। अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ फटभागी। सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया। हर भगत पाए चित लागा जप जीवै से वटभागा। हर अमृत बाणी गावै साधा की धूरी नावै। अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल विचारा। कर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवां गुरपूरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहां सुहेले कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला। हर दिन रहन कीर्तन गाइयै बहुना जोनी पाइयै। जिस देवै पुरख बिदाता हर रस्त नहीं जाता। जम कंकर नेड़ ना आया सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवां गुरपूरै कीती पूरी प्रभ रव रहे अपर पूरी। खेम कुशल पया इस नाना।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै, हरे अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाई है, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जा पौजल पार उतारा रहाओ।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सर्बस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल नशारी, इस आगै को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एह पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आरा दे, कारज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, ताकी कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखां का दाता सतगुरु, ताकी सरनी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हरे अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखे।

आओ सुनी पुकार सम्रथ स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निध पूर्ण खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वरगाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जै सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उतारो रहाओ अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा मेहमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सक्त रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे। निस्बासर बिख्यन कौ तावत केह बिद रोकौता हे रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै। पर तन पर धारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यो लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

मोह अपमाना हरक सोग ते रह न्यारो नाहे माने अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर कौ कीनी तह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहू दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै

अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे, हृदय शब्द सदा पैर चिया गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई, जेह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बुझी तुझै बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई, पिख्या नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

विण बोइथ पै डुबिया प्यारे कंदी पाए कहा रहाओ साला ही सालहना प्यारे दूजा अवर ना कोए मेरे प्रभ सालहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत प्रवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चले कारज सार हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जद हो जाए हुक्मे बन चलाइए प्यारे मन मुख लह सजाए हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमे दोए हुक्मे पवे पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए हुक्म सन्यापे सहा का प्यारे सच मिलै वड्याई होए आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच ना जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौ तिन बलिहार जाओ नाव मिलै संतोखिया प्यारे नदरी मेल मिलाओ काया कागद जेठिए प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखे और तार सोरठ महला पहला पहला दो तुकी तू गुणदाता निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े ते है। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हर नाक समार पजाया। गुरमुखां नू प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नू प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का इस्वार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवे जावे ठौर ना पावे, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधकाई, वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर सच है सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राखिया और तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लय रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਨੈ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਪਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कूण ना चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटकियो अधिक अहं बुद्ध।

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै, सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाईयन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन न मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखां कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखां नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सुवारथी कारज ना सकै सुवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिर

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाय लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आ बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत चेरी। तू जम्बपरी है हेरी प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जन दाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका औरन पहजाना चूका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कभी

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको अंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांग

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जैं देखा तैं सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविया अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सदगुर बण जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए, ता की सेवा सो करे जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड्याई देह जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहेब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन मैत सरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किश पाईऐ, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाणा। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताणा। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए। सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ, वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोदिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरै, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागे, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवे प्रगास, ताते बिख्या मैं रहे उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै, जिस

पावै सो प्रवान सो सेवक दरगह पावै मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहेब कृपा करै सो सेवक जमते कैसा डरै। भणत नानक करे विचार साची बाणी स्यों तरे प्यार। ताको पावै मुख द्वार जप तप सब एहो शब्द है सार। तनासरी महला पहला जियो तपत है बारो बार। तप तप खपै बहुत बेकार जय तन बाणी विसर जाए।

न जावे सदे संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना, उण छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंदो अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला। कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवां, कर कृपा दियो मोहे नामा। बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा।

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोजी पाई सबको मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिनस्यो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानकर मैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान और इद भीतर वसिया ता दुख भरम पौ भागा

हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे बिबका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी। जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिन हर कहां अगाई। रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा। उद्यम करै सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी पर गृह जोहन चूकै। दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कछुवै जाको फिर एह तावै। जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा। रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई। बरना साको उस ताकी कीमत कहन न जाई। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आया चिंता। जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला। तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित्र पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलवख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवां, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई। तुम कर

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन थाप्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देखो कछ संग नाही चलना, जा कोरे कर्म पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला। ते नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोहो महापौजर तारे। रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोइथ पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई नव निध रिद सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई। रहाओ ता को कोई न पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई। जमकी त्रासन कै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत, दर्भ देह गर्ब है भूमवंत अभिमानी। राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वरत, अपना बल नहीं हार। रहाओ आन त्याग पय के आसर, सरन सरन

जन की तुर देहो कृपा निध। नानक कह सुख एही तना श्री महला पंजवा। जतन कर मान खुडह कावे ओह अंतर जामी जान। पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उत ते उत पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा। नाम गुर दी होए अपने जाके मस्त करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की। माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पाले से ही पूरा सहा। नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा। नेत्र पुनीत पे दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गा।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी

मंतन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कथू जात। सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़ त्यंद नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

दूत दुश्मनों सब तुझ ते निवरै, प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भक्त दुखाए, ओह तत्काल तुम्हारा निरखो तुमरी ओर हर नीत, मुरार सहाय हो दास कहो कर गए उधरो मीत, रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमा ना कर आप, नानक अंध भय दुख पागे सदा सदा हर जाप, तनासरी महला पंजवा चतर दिशा कीनो बल अपना, श्री उपर कर धार्यो कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे।

नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे मेरा चीत आद्य अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम सिव मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमर उदन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मद अंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन खन मैं तारा

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे।

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा कर हला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृस्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाल आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, ना कश आए बो ना कश जाए बो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखावै तन्ना। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो, परिया शादन निकाया, नाज मंगो सत सीका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। जय श्री महला चौथा, कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मेरे हीर रत नाम हर बसिया, गुरहा तरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुखे उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुरमूढ़ पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण ना सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलो जन्म सनाथा। मोको कीजे दास दास, दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञान ही न ज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरे अंचल दीजे, जन नानक चले मिलन था। जय श्री महला चौथा, हीरा लाला मुल्क है भारी, बिन गाहक मीका काखा, रतन गाहक।

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम्या देरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा आयो दुख हरण सरण करना पत गहयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोबिंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानके अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बकों सुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लय लड़ दास जने अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा

श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल शरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर मेहो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नाश होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ
जन मरण पै कटी है।

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदूत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना सो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पहे दया

वली नियामत बिरादरां दरबार मिलक खान आए, जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बेदाए। हवाल मालूम कर दंग पाक अलाहा, बुगो नान के अरदास पेश दरवेश बंदा। तिलंग कर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सभी ऊपर

दरियाओ तू दिहंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सामले बरना आसपात गजपात नर नरेंद नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपट जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बंध आ सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरिया चंगियाईया अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै, ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जां को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाव आप वरताए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवै जोगवै, भोगी होवै खाए, तपिया होवै तप करे तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। अगे पुछना हो वही जे सणनी सणे जाए। तैसो जैसा कंडिये, जैसी कार कमाए। जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਪਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हो हर प्रभ प्यारा टूं टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए। गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने। सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग न हो वै कोय। नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सुही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए। गुरमुख पीवे सही समाए, हर रस जन चाखो जे पाई। तौकत अंत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार। मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, हों मैं करे बहुती मिलै सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका। मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे। जे कृपा करे हर राय, सूही महला चौथा। तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा। जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हर तन संचिय पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तन की, भगतां को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्करै, पानी है जमदूतै, किसे का गवाया ना जाई। हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया। अगे पलत सागत हर दरगै, टोई ना पाई। इस हर तन का साहो, हर आप है संतो। जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए। सो हर गुणा रवै, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णिया, जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सोने फल सब अगे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावे त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमा

तू करता सब किछे आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सब के सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाना है, बुरा भला तू सब के सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सबरो गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं घर कमाई जिन किए तिसे न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरै वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवै बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुदे आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वड्याई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाइयै साच लगै ताह मैं जाइयै जिसनो लाए लए सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै तायाणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजवा तन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सा सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभ अबनासी रहा भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सुही महला पंजवा गृह वस गुर कीना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिरको लोड़ी कवन कहा गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवै
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ ਕੰਧ।

प्रगटया सूर ज्योत उजियारा सेज विशाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिर सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यों हियो मिलन प्रभताई खोजित चरियो देखो प्रे जाई सुनत सुंदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीर निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे सार संभाली मोहे निर्गुण के दाता रे बै खरीद क्या करे चतराई एहो जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ प्रभदाता मोहे दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावाओ दरसारे मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कहतो पहुता जो प्रे माने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सागत फिरता नीर बरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा लाल

साच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल है खरना कूड़ै मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक को करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला।

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टूट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला। साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ। जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत। मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे पाज देनो नित रैणी। जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। शरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पापत जायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा। झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक तो प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवां, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवां, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्र माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवां, कर छेवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹਾ

आस चुकाई। मेरे राम राए तुद चित आया उबरे, तेरी टेक परभाषा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाता पेटिया सदगुर पूरा। सूही महला पंजवा, जब कछ ना सी ओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखै, ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राए मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटै कतहूं, काची दे आणी, कृपा करो प्रभ करण हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने, कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर तन हर नामा, प्रवान गणी से ही एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै

तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरे आराधै तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजै, नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदिया महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, रहाओ सहज सिंगार, कामन कर आवै ता सुहागण जा कंतै पावै, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई, खरी सियाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नमनिद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गैले हो प्रीतम प्रभराया, पणत

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल, प्रीत में अपना जे चलै गुण नाल, नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सुही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाई है। त्यों साक्त जोनी पाए, पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना। हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आईऐ। मिले तुझे रजाए, शब्द कमाईऐ। तू कर कर वेखै आप, देह सो पाईऐ। तू देखै थापो थाप, दर भी नाईऐ। देही होवग खाक, पमन उडाईऐ। इहो किथै कर औताक, महल ना पाईऐ। देहो दीवी अंध कोर, कब मुहाईऐ। गर्भ मुसै कर चोर, किस रू आईऐ। गुरमुख चोर ना लाग, हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग, जोधी पाई है। लाल रतन हर नाम, गुरसुरत बुझाई है। सदा रह निकाम, जे गुरमत पाई है। आराध्य है हर नाम, मन वसाई है। नानक मेल मिलाए, जे तुद पाई है। सूही महला पहला, मनो ना नाम विसार। अहन सत्याई है, ज्यो राखै कृपा तार, तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम, लखटी टोहनी। रहो साहिब की टेक, ना मोहै मोहनी। रहाओ जै देखो तै नाल, गुर दे खालिया। अंतर बाहर पाल, शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए, नाम निरंजना। तुद पावै तिवै रजाए, परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागै, मरना आए कै। जन्म मरण परवान, हर गुण गाए कै। हौ नाही तू होवै, तुद ही साजिया। आपे थापो थाप, शब्द निवाजिया।
देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है। मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे। राग सुही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाने हौं मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे सिउं लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ। गुरमुख गावै गुरमुख बूजै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चलै सतगुर पाए साचा शब्द सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै हम मैं विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचा रंगराता गुर कै सहि सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नामन गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामन लगे ना लाए सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा द्रुवत कहन ना जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै। हम मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए। हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने जमण मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणे। नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा काया कामण अत सवाले ओ पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे तेसदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा, इस काया अंदर नौखंड प्रथमी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नव निध पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुल आवै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्द करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा से

आए, मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहन लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुरचरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए, तिस देवा मन अपना निम निम लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान, सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओह अबनासी पुरख है समय रहा सुमाए। राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास, नानक दरगह मन्या गुरपूरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां, कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद।

भगत बै मेटन, साध संग जमदूत ना भेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला, अमृत नाम रसन नित जापै, रोग रूप माया ना ब्यापै, जप गोबिंद संगी सब तारे, पोहत नाही पंच बटवारे, मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सरफला सोई जन पाए, तार अनुग्रह

मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू टुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदै रखां समाल पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्स दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हों कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्श रंग माणिया जय डिठे मन तीरिय किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मरण मोह दुख साधु।

नरक स्वर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारया। आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिनको भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हाँ कह जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हाँ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हाँ सतगुर बाण तेरे जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो। से वस्तु सह दितियां, मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो। हाँ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली साहोर है क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो। तै सह नालो मुती अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी राह जियो। तुद अंतर हों सुख वसा, तू मंत्र साबाह जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो। पाणे थल सिर सर्व है कमल फुलाया काह जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परिया जियो।

कर अपन रह खड़ी तका मैं मन चौक नेरा राम। मन चौक नेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन कौ बल जाई है साच मिले कर आए। कर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकर देख रंसी राम। गुण संग रहसी खरी सरसी जा रावी रंग रात, अवगण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदात। तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायाड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रया ने दूरी राम। प्रभ दूर ना होई कटकट सोई तिसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वड़ियाई। अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरै सच पाईऐ, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईऐ। फिर उचरड़ीऐ माड़ड़ीऐ तिहलोवा सिर ताजा राम, हम बिसम पई देख गुणा अनहद शब्दया गाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवाणो। पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवै ना जासी, नानक गुरमुखिया पछाणे प्रभ जैसे अवनासी। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला, कर चौथा जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़ै लाया, दान तिरे कर चानना तन चांदी पाया। चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया, गुण जन लाड़े नाल सोहै परख मोहनिया लया। विवाह होवा सोभ सेती पंच शब्दी आया, जिन किया तिन देखिया जगत हंदड़ै लाया। हम बलिहारी साजना मीता अवरीता, एह तन जिन स्यों गाड़िया मन लियड़ा दीता। लिया तां दिया मान जिन स्यों से सज्जन क्यों विसरै, जिंदे से आया होहे रलियां जी से ती गैर है। सगल

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवित मरी है भौ जल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वैसे त्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हो बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सत कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्त कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्स भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजे

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्व रया परपूरे। तां की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सत गुरबाणा। ऐसा गुरबट

अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करता है आप वसाया राम, करता है आप वसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रासे, प्रभ आप स्वामी अपे आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन एहो थान सुहाया, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभु बनासी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरै, नानक सदबल जासी, दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रपया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला, दय दिसपुर रहया जा स्वामी, कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीवर खाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पव पवंजन, अनहद वाजे तुनिया राम, अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवै, हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलवे सगले खोवै,

अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दासवाई राम दासवाई ने खुट ना जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सवाई नानक गुण गावै स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावै सदा करै जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संतां की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अंदेनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध्य प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अबनासी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उरतार आज्ञाकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहविये निमाणिए सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार अपना।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी शाड मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड सवेरा, घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो राओ, बावल होई सो सहलो राओ, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरे बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहु बेगाना पौका संताई। भगतहीण नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदिर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवां।

अगम गोचर लख्य पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने। मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हौ मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पाव ना दे लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख होवै सो मुक्त कही है। मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे। परम पुलाने से मनमुख कही है नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तसे आए सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवको सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंदन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तवै कोई चाले जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करमे दे वड़े आई एक परम पवे अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़े आई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमे कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आवसे मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए एह रंग कदे न उतरे साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हाँ मैं माया शब्द जलाई दर सच है गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसर वेखै
बहु न मरै न जंपे खै करही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वडियाई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना ज्यो नठुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरखिया जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाईए होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सहमा ओए फिर जोन पवाईए मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़करमा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उदरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए। गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सवरैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यो पाव चितवीय बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी
हम जंत तो पुरख जंतनी जन नानके प्रभ करते स्वामी जो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा। अनद मूल त्यायो पुरखोत्तम अंधन अंध आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे सेव दरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आप

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु धूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाईए मीता, चरण कमल स्यों लाईए चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वडभागी, साह संग्राम लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसरो।

सत्संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवां, कवन जाना प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा। गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ। एक सबे नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गरमै हाथ दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया। भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूपरिया, पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधो भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद कणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, पय मनोरथ सो प्रभ जापे। अर्थ धर्म काम मोह का दाता, पूरी पई सिमर सिमर विधाता। सा संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बिलावल महला पंजवां, सरवण दान पूर्ण गुरदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर सगत नर थीवे। राम नाम होवा रखवारा, चख मारो सगत बेचारा। निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गल है सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहूं बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, सांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत आउद, फाही फाथा जम कै जाल। तेरी सरन प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागरत पारी। उधरो साधु संगर वाला रहाओ। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेसर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगला नंद किया परमेसर, अपना बिरद समारिया। साजना होए कृपाला, बिकसे सब परवारिया। कार्य सतगुरे आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ। वन त्रिण त्रिपवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस उपर होवत दयाल, हर सिमरत काटै सो काल रहाओ। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटै जमजाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल, नानक जाचै साधरवाल। बिलावल महला पंजवां, मन मैं सिंचो हर हर नाम, अंदन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी

आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ, कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा, रो गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया। रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम अमृत माए ते आई। नानक गुरपूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा, सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार। रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आग्या ही मारे करतार। नानक दास ता की सरनाई, जा को सबद्या खंडिया पार। बिलावल महला पंजवा, ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बख्सिया संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मंतन या रोग, गुण गावो नित राम के ए अवखद जोग। आए बसो कर देश में एह भले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल। ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल। रहाओ अह बुद्ध कहो बिनसना ए तुरकी ढाल, बहजोनी जन्म मरे बिखिया बिकराल। सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाधानंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न ना थिया। जां का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे, सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार। रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो। रहाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुट्टे दो ख्यार रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो। सरण सुहागने आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। मैला कदे ना हो वही न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए। सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए। रहाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे। सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे,
रहाओ। हम अवगन करें असंख नीत, तुम निर्गुण दाता रे, दासी संगत प्रभु त्याग, ए कर्म हमारे। तुम देवो सबके दया तार, हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो, नैचित खसमारे। तुइ ते बाहर किश नहीं, पव कट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर, लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवां, दोष ना काहू दीजिया, प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे है, सुख होए घना, मन सोई गई है। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी, सब अवगन हमा रहाओ। ज्यो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी तरिया तर तेरिया, एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया, सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवां, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै। सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे पूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई। जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी। दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवां, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता अंदर।

आओ रूप धूप सौगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख भया खिन पंगन देहाद। ए अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद प्रभ कृपा ते गुरमिले हर हर बिस्माद। सूख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद बिलावल महला पंजवा चरण पहे संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुरदसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत रहाओ। पंच चोर आगै पगे जब साध संगेत पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह सोभा सेत। निहचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियारा फिर फिराओ वारी। रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुखना ए खिन मैं जारी दया माया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तहनो नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारा बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयालो निस्बासर मन अंध हो तो चिरवत कृपाल। रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियान पो कश नहीं नाही कश काल भ्रम पै राखो मोहते काटो जमजाल। बिना करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा कीता लोड़ै सो करै तुझ बिन कश नाहे प्रताप तुम्हारा देखै। जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छुटिया बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपूर जीवन सुख सब साध संग प्रमन सापूर। जित जित लावो तित तित लगै सियान सब जाली जत का तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया। ता ते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारै राखिया पय परम पसना नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल राज मिलख सिकदारिया अग्नि मैं जाल।
संत जना का शोहरा, तिस चरणी लाग माया तारी शत्र पात, तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साख सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साक्त स्यो मुख जोरे आदवी चो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, सरवणी सुनाओ हर हर हरे, ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार, हर नाम ते आवो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए, कर बिनो बुलावो। पाव मलोवा आप त्याग, संत संग समावो। सास सास न विसरे अनकत ना तावो, सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साह संग तिस पेटे हरराया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभु सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रपहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह, अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभु मने ते जिसके गुण ए है, प्रभ तज रचे जे आन स्यो सोर लिये खे। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास, मत बिलम करे हे छोड़ परपंच, प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने है। जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है, कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने हे, दास दास को दासरा नान कर ले हे। बिलावल महला पंजवा, एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास। जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ। आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार, दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमार। करण हार जो कर रहे साई वड्याई, गुरपूरे उपदेसिया सुख स्मर जाई। चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकुम पछाता, नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा, महा तपते पई सांत परसत पाप नाठे। अंध कूप में गलत थे काढ़े दे हाथे, ओए हमारे साजना हम उनकी रेन। जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अव्याए, बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए। पै बिन से तिहु लोक के पाए सुखथान, दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम। नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बिलावल महला पंजवा, सोई मलीन दीनहीन
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਨਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਨਾ ਬੂਜਈ ਆਪ ਗਨੈ ਬੇਗਾਨਾ ਦੁਖ ਤਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸਰੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ

नीच खन में थापै है, कीमत कहीं ना जाई है, ठाकर परताप है। पेखत लीला रंग रूप, चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया, संग चलिया कमाया। कारण कारण समर्थ प्रभु, तेरी सरनाई, हर दिन सरैण नानक जपै, साध साध बल जाई। बिलावल महला पंजवा, जल ढोवो एह सीस कर।

देव सुहनी साध के बीजन टोलावाओ रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावाओ। ओवा रस में सात तृप्त होए बिखे जलन बुझावाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावाओ। करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावाओ। उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावाओ। नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावाओ। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै। जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै। वडभागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचया गुर पय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग। मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औख दहर का नाम है जित रोग ना व्यापै। साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर जापिए अंतर लिवलाई। किलवख उतरै सो दोहे साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पहते उपजै भगत प्रभ यंत्र होए सांत। नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश। मन की मत त्यागी सुनिया उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दा तार। मन ते कबो न विसरै सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव। जां कहो कृपा करहो प्रभ तां कहो लाभो सेव। निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद। नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई। नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया। गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या। बिनसी मेरी पीर तन मन तन मन सब शीतल पया। पाया सुख बीर रहाओ सोवत हर जप जागया। पेखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ताँ का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगीतरे कोल कुटां ब्योधारे। सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन। नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ। तान दीबाण परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए। निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे। एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए। कथा पुरातन इयो सुनी भगतन की बानी। सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे। प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा
बंधन काटै सो प्रभु जाकै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राव। आशा परम विकार मोह इन मैं लोभाना, झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ, नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवां, कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सरबसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवां, उदम करते आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे न विसरै अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जा कै सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा, जिन तू बंद कर छोड़िया फुन सुख मैं पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवत या अथवा मोया किश काम न आवै, जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै रहाओ। अरे प्राणी उसन सीत करता करै, काम ते काढ़ै कीरी ते अस्ति करै, टूटा ले गंढै। अंडज जेरज सेतज उत्पुजा, प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम ते कछु ना होवना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवा, खोजत खोजत मैं फेरा खोजो बनथान, अशल्यापे अशल्याशे दा भेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन ते सपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनाओ दर्शन की प्यास, रूप ना रेखना पंच तत् ठाकर अबनास। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा, नानक तिस प्रपेटिया जा के पूर्ण कर्मा। बिलावल महला पंजवां, जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप, कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निबहत रहे गुर शब्द खूट, पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद्या पार, धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार। भगत आराध्या एक रंग गोबिंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई, नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवां,
सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पै रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रहाओ।

ਬਸੇ ਪ੍ਰਵਗਮਿ ਅਪਾਰ ਬਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਕਿਛੂ ਨ ਦੀਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਭੈ ਕਰੈ ਸਚ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਐ ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਜਿਨ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗ ਰਹਾਉ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਜਾਪੀਐ ਨਿਤ ਕੀਚੈ ਭੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਵਾਰਣੈ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਸਹਿ ਬੇਹੋਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਵਰਿਓ ਪਾਪ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਭ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਇਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਗਇਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮਿਆ ਰਹਾਉ ਬਹਾ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢਿਆ ਕੀ ਨਾ ਅਪਨਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਧਰ ਮਸਤਕ ਥਾਪਿਆ ਨਾਮ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਆਨ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਵੈ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ ਰਹਾਉ ਸਰਨ ਪਰੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਂਗਤ ਜਨ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਖਨ ਹਾਰਿਆ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਕਿਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ ਪੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ਉਚਰਤ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਦੂਰ ਤੇ ਜਮ ਭਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਆਂਦਨ ਸਤ ਜਾਗੈ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਤਿਤ ਤਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਨਸੇ ਅਨਰਾਗੈ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੂਤ ਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਕਰਨਾ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਤਾਰੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਜੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਤੇ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤਾਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਨ ਬਲ ਜਾਓ ਅੰਦ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਹਾਓ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹੋ ਬਨਿਓ ਸੁਭਾਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਬਾਹਿਤ ਫਲ ਪਾਓ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਧ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਰ ਕੋ ਨਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟਸਾਸ ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਜਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹਰ ਗਾਈਐ ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖਤੇ ਕਹਿ ਸੁਣਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਕਲਿਆਣ ਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਕੀਨ ਜੀ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਪਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਨ ਰਹਾਉ
पूर रहयो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा, अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेवको मुख निंद किशार। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ। रहाओ जियन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा, मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा आरा दया होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल। दुख भूख संसा मिटया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पय काम, पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। साज जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई। रहाओ बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पहियास, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास। रहाओ सुन स्वामी अरदास जान, तुम अंतर जामी थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा, अपने बालक आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव। रहाओ भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नु अपनी कल तारी, मन बाई फल दित्या नु नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा, चौप दे दुप दे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए। रहाओ सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपै दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सबहू तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए।
अतुल अतुल अतुल नह तुलिया भगत वच्छल कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है। रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन। रहाओ संच बिख्याले ग्राह जकीनी, अमृत मनते डारन। काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इन ते काट लेहो मेरे स्वामी, हार परे तुम सारन। नानक की बेनंती प्रप है, साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा। संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिन से रात। रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप, कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते, गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे, कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार, बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो, कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते, ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा, अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा, हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा, एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है, जहां से राच माज तुम लागे, ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिने मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे, बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवार, पावक तले जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे, केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो, मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली, प्राण प्यारो मने आधारो। चीत चितवाओ जैसे पान तबोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो,
रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रेम मुखला गो जौवट पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रेरवी सुहागन, अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा, गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई, जब ते पेटे साथ दयारा, तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर रहो संपूर्ण, शीतल सां दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच, संतन ते हो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण न साकै एक रोमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा, बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथिया किस कथन न जाई। जह जह देखा तै रया समाई रहाओ, जय महाभयान दुख जम सुनिया, तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर मेरी उल्ट तरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे।

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कौ तुही पछाने, जो जी अन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डह कह, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यो बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। राओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो

बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कबो न होवो दृष्टया गोचर, जी कै संग बसे रहाओ। प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सास प्रभ तुझै चितारी। कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला। आठ पहर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रभ आपे। बिलावल महला पंजवा, तन तन योबन चलत गया, राम नाम का भजन ना कीनो, करत विकार निस्पोर पया रहाओ। अनक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया। मेरी मेरी कर कर मुठाओ, पाप करत न परी दया। महाविकार कोर दुख सागर, तिसमें प्राणी गलत पया। शरण परे नानक स्वामी की, बहां पकड़ प्रभ काढ लया। बिलावल महला पंजवा, आपना प्रभ आया चीत, दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत, कुशल पया मेरे पाई मीत। रहाओ गई ब्याद्यो पाद सब नासी, अंगीकार कियो करतार। सांत सुख आनंद कनेरे, प्रीतम नाम हृदय उरहार। जियो पिंड धनदास प्रभ तेरी, तू समरथ स्वामी मेरा। दास अपने कौ रखन हारा, नानक दास सदा है चेरा। बिलावल महला पंजवा, गोविंद सिमर होवा कल्याण, मिट्टियो पाद भया सुख साचा, यंत्र जामी समरिया जान। रहाओ जिसके जीतन किए सुखाले, भगत जना को साचा तान। दास अपने की आपे राखी, पै पंजनी ऊपर करते मान। पई मित्राई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काढे शान। सुख सहज आनंद कन्हेरे, नानक जीवै हर गुण वखाण। बिलावल महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ पय कृपाल, कार्य सगल सवारे सतगुर। जप जप साधु पय निहाल। रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने, दुखी सगले पय रवाल। कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरा सदगुर पूरा, गुर प्रसाद प्रभै निहाल। बिलावल महला पंजवा, मूलाल नस्यों प्रीत बनी रहाओ। तोरी ना टूटै शोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। दिन सरैन मन माहे बसत है, तू कर कृपा प्रभ अपनी। बल बल जाऊ श्याम सुंदर कहो, अकथ कथा जा की बात सुनी। जन नानक दासन दास कहियत है, मोए करो कृपा ठाकरे अपनी। बिलावल महला पंजवा, हर के चरण जप जाओ कुर्बान। गुर मेरा पार ब्रह्म परमेसर, ताका हृदय तार मन ध्यान। रहाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता, जाका किया सगल जहान। रसनारवो एक नारायण, साची दरगह पावो मान। साधु संग प्राप्त जाको, तिन ही पाया हो निदान। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, कर कृपा नानक दी जय दान। बिलावल महला पंजवा, राख लिए सतगुर की शरण। जय जयकार हुआ जग अंतर, पार ब्रह्म मेरो तारण तरण। रहाओ विश्वंपर पूर्ण सुखदाता, सगल समग्री पोखन परन। थान थनंतर सर्व निरंतर, बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी, सर्व सिद्ध तुम कारण करण। आद जुगाद प्रभ रखदा आया, हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बिलावल महला पंजवा, दोपदे कर अठवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा, ई गै निर्गुण यू गै सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा। रहाओ नगर मैं आ

कहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस है, हर नाम मामन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पलमा न पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दिखिया जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल त्यगन मैं जन आपो धारे, करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपूरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

है तन तन कलातो सब देख अब महन्ना बिन नावे किछ संग ना जाना रहाओ कीचे रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन पस मैं टेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन शब्द नहीं उतरै मैल गीत राग कंताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुर्मत दर्द ना जाए छूटे गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल वाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुखथिया सूकर स्वान गर्दप मंजारा पशु मलेश नीचंडाला गुरते मोहफेरे तन जोन पवाई है बंधन बांध्या है जाइए गुर सेवा तेल है पदार्थ हृदय नाम सदा करतार्थ साची दरगह पूछना होए माने हुक्म सी जैदर सोए सतगुर मिले तां तिसको जाने रहर जाई हुक्म पछाने हुक्म पछाण सच्चा दरवास काल बिकाल शब्द पै नास रह अतीत जाने सब तिसका तन मन अर्पै है ओ जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ मान बिन नामे पाज रह निदान सतगुर सेव नाम वसै मन चीत गुर भेटे हर नाम चितावै बिन नामे होर झूठ प्रीत रहाओ गुर कहे आसा कार कमावो शब्द चीन सहज कर आवो साचै नाए वडाई पावो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर घर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेविय अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चुकै अभिमानै गुरमुख नाम सदा सदा वखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति जो समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई दो काटे हृदय नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करनी सार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार है साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां एको अंकार सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै आन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपव ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह न सको बिन नावै गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरो दस द्वार है जाके अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावै मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहुमानक भरिया जागे ज्ञान तत् लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोए था खेवट शब्द गुरपार लंगैया जम जागाती नेण ना आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवै मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मंत्र बतै श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे वे आपे तुरिया गुण है गुरमुख लैया एक दृष्ट सब सम कर जान है नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है जोत सबाई
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਵਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਬੇਗ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਈਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਐ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਉ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ, ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਿਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर भवन करै बुझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन शांत न आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंतो पैया साधु शरण भरै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया नामा जय देव कबीर त्रिलोचन औ जात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वच्छल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हों आकल बिकल पई गुर देखे हों लोट पोट होए पैया रहाओ हों निरखत फिराओ सब दे दिसंतर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया मन तन काट देओ गुरे आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया मस्त काट देओ चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत वच्छल उवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर बड गहन गहनैया हर हर सरदा सेज विशाई प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया कियो सिंगार मिलन कह ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करै तेरे वस पैया दयाधीन करो रख ले वो नानक हर गुर शरण समैया बिलावल महला चौथा मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख भुलाने मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमले अमली मर गैया जिन को प्यास होए प्रभ केरी तिने अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै हौ तिस विटो बल बल घूम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकर महल ना पावे मनमुख परमैया गुर गुर कर तो शरण जे आवे प्रभ आए मिले

हर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहा पकर नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमलियाधार, हौं जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साद। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करै मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार। ता की मित ना जाने कोए, जल थल महियल सोए। कर बंदना लख बार, थक पर्यो प्रभ दरबार। प्रभ करो साधु तूर, नानक मनसा पूर। बिलावल महला पंजवा, प्रभ जन्म मरण निवार। हार पर्यो द्वार, गह चरण साधु संग। मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया लेहो लड़ लाए। नानका नाम ते आए, दीना नाह दयाल मेरे स्वामी। दीना नाह दयाल, जाचो संतरवाल रहाओ। संसार बिखिया कूप, तम अज्ञान मोहत कूप। गह पूजा प्रभ जी ले हो, हर नाम अपना दे हो। प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ, नानका बल बल जाओ। लोभ मोहे बांधी दे, बिन भजन होवत खे। जम दूत महापयान, चित गुप्त कर मैं जान। दिन रैन साख सुनाए, नानका हर शरण आए। पै पंजना मुरार, कर दया पत उदार। मेरे दो गने ना जाहे, हर बिना कतै सुमाहे।

गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए, वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर। मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत, अल कमल पहना पेत ज्यों चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास ज्यों तरन भरत प्राण, ज्यों लोभिए धन दान ज्यों दूध जलै संजोग, ज्यों महा खुदियारथ भोग ज्यों मात पूतै हेत, हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग, ज्यों चोर हिरत ने संग महंग लै का मैं बंद, ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर बिसन ना जाए, हर नानके हो मन लाए कुरंक ना दैने हो, चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग, गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले, कुल समूह कर तो उधार संसार उत्तर सुपार हर चरण बोस्तता है, मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मुरार।

एक में एक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर। चौथे उपाय चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़ती ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगरा ते एक मरतूर, एक दर कर साचै देख दूर, झूठे कौ नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटै जां खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, सबदे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सचनी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमें मनुआ रहे आले बुलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चैता गै, ज्यों तागा जग ए वै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस्खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाना, बाहर जा तो पीतर आना, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना, सब सुत संयम साच पछाण, तेर सतरवर समुंद किनार, अमृत मूल शिखर लिवतार, डर डर मरै ना बूढ़ कोए, निडर बूढ़ मरै पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पहाण, चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सतकाल समावै, ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत हो लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माहे, मनमुख पूले आवै जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावै, आप पछाणै जा सतगुर पावै, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रहै उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरत वरना कोई, ओत पोत।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा

कोई वाहे को लुण को पाए खलहान, नानकेव न जापई कोई खाए निदान। महला पहला जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुर मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन मरण सवारिया, सलोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया। कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हो मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमती हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया बिकसो रचै रचन, दुष्टा सेती परहड़ी जन से वाद करन। नानक साकत नरक मैं जम बदे दुख सहन, पया किरत कमाव दे जब राखै तवै रहन। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै हौ सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यों तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यो बणिया। सलोक महला तीजा अपना आप ना पछाणई हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर। मन मुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर, नानक बख्श मिलायन सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद, अंद नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहुन न मन तन भंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे, पिछले गुने सतगुर बख्श लए सतसंगत नाल रलावे। ज्यों मीहे उठे गलियां नालियां टोबियां का जल, जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच जित मिले तिसना भुख उतरे हर सांत तड़ आवे। नानक हो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहका, जे सतगुरु नो मन्ने सो सबना पावे। सुध बिलावल बाणी भगतां की कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो संसार पे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कित कम आई। यह आस पर मित्री भाव दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कहलिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविय नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

हमरी वेदना हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर रहाओ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांत शरीर, शकायक राग गौंड महला पंजवां, चौप देकर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ, सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भायले, पगतारे सास ले खैले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन कौ ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ, ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर विशरै, फिर संगत हर हर त्याय ले, जैसे मीन रसन साध

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हरन आए। गोंड महला पंजवां गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारों गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों मत को परम पुलै संसार गुरबिन कोई नव तरस पार रहाओ पूले कौ गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार मैं भया प्रगास जिन किया सो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करना जोग गुर परमेश्वर है पी होग कहो नानक प्रभ यह जनाई बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई। गोंड महला पंजवा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिट है दात गुर परमेश्वर एको जान जो तिस पावे सो प्रवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे दुख दर्द प्रमता का भागे गुर की सेवा पाए मान गुर उपर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर के सेवक को दुख ना व्यापै गुर का सेवक दे दे जापै गुर की महिमा कथन ना जाए पार ब्रह्म गुर आसमाए कहो नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ता का मन लाग। गोंड महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देओ अलाखा पेओ सर पूचरण गुर से गुर बिन अवर नाही मैं थाओ अंधन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर दे ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बोइथ तारे पवपार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा गुर कै संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाइए वडभागी गुर की सेवा दुख ना लागी गुर का शब्द ना मेटै कोए गुर नानक नानक हर सोए। गोंड महला पंजवा राम राम शंकर व्यवहार राम राम राम प्राण आधार राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सबरे उसमाए संत जना मिन बोलो राम सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम तन संच पंडार राम राम राम कार्याहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिवलाए राम राम जप निर्मल पै जन्म जन्म के किल बिख गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम पै पार उतारे सब ते ऊच राम प्रगास निस्बासर जप नानक दास। गोंड महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ।

मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महल्ला।

0: नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायन, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखण हार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लो मोह ना पो है, साध संग जप निरंकार, निंद कै मोह लागै शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल, हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रप्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो गुडा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसै ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए, ना इस कुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एह परंपर होता आया, पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया, अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ता का प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर।
1: राग गौंड।

जैसा करे सो तैसा पाए, अब मान्य की जड़ सर पर जाए। नीत अरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा रखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कहिए, मिले असंत मष्ट कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर शुश

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत मिल काया कीनी तत कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर्म किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे, राग गोंड।

हरे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाए ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

देखो, इस मरते कहो जे कहो रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सरचट बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दर्ब खोई, आवत जात नागसर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर। गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकसे संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछे पर, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण। हम

वाकाय अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागे दोख। तन सोहागन महापवीत, तपेत पीसर डोले चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत से सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शन किशन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे।

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाईऐ, साधु बिन तैसे अवगत जाईऐ। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटै, मन कूटै तो जमते छूटै, कुट कुट मन कसवट्टी लावै, सो कूटन मुक्त बहु पावै। कूटन किसै कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतियै परचै साचै, इस मन आगे पूरै ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारै सोदै, पांच पलीतै कहो प्रबोधै, नौ नायक की भगत पछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करै, इंद्री कै जतन नाम उचरै, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन गोंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टह केव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साद रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निकावन, अन्न बा

कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तान्या नाद ठाकर मन मानिया। राग गोंड बाणी नाम देओ जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने, प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा। अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ, गया पिंड भरता बनारस अस बसता। मुख बेद चतर पड़ता, सगल धर्म अशता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता। खट कर्म सहित रहता, सेवा सख्त संबादं। मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोबिंदं। भज नामा तरस पव सिंदं, गोंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए। प्राण तजे वाको ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेराओ। राम छोड़ चित अंत ना फेराओ, रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा, सोना गढ़ते हरै सोनारा। ज्यो बिखई हेरै परनारी, कौडा डारते हरै जुआरी। जय जय देखो तै तै रामा, हर के चरण नित त्यावै नामा। गोंड

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

बस अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिर था जावै साध का निंदक कैसे।

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महा।

को नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रहा समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी। बाजे लोग सुने पत झोली मंगण कै ताई। पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे। गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए। मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे। सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे। जेतन मिला ता कीर्त आखा, ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह। ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सुन मा शिंदरा नानक बोले। वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले। आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे। अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। पिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संध मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए। निहचो दे वड़ियाई, गुर तार तारन हारिया। देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा।
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਰ ਲਾਈਐ ਏਤ, ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੇਤ, ਅੰਤਰ ਪਾਹਿਤ ਸਹਿ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹੱਛੀ।

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

जीवन दाते हर संत पगी ले पावै। हों काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवै। राम कल

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरणी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत ना पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राखै कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापै कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवै मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदे पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवै निध पावो इन बे तत् बेलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जाना सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले है मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਭੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ। ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे।

कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा। एहो तो चलत भया रहाओ, अगली किश खबर ना पाई। रोवन हार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंद, एहो तो रचन रचिया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग। नह बिन सै अबनासी होग, जो एहो जानो सो एहो नाए। जानन हारे कौ बल जाओ, कहो नानक गुर भरम चुकाया। ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली।

कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो बड़े भाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे हो बिचार राग राम कली महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पुकारे ना तू मानै खट पी एका बात वखानै दस अष्टी मिले को कहया तापी जोगी भेद ना लया किंकरी अनूप वाजै जोगी अमतवारो रे रहाओ प्रथमे वसिया सतका खेड़ा तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा दुतिया अर्धो अर्ध समाया एक रया ता एक दिखाया एक है सूत परोए मणिए गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए फिरती माला बहविद पाए खिंचा सूत आई थाए चाहो मैं एक है मट है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इं किंकरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पढ़।

तेल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्योग, सुख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ। ऊहा सिमरै केवल नाम, बिरले पावे ओ विश्राम, भोजन पाओ कीर्तन आधार, निश्चल आसन बेसुमार, डिग ना डोले कतहू ना तावे, गुर प्रसाद को एहो महल पावे।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

जाल इष्ट मीत जान सब चलै हर हर नाम संग तेरे चलै राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहै हर सिमरत जम कश ना कह रहाओ बिन हर सगल निरार्थ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहां उहां तेरो उजल मुखा कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपै जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार हर संत करे सोई प्रवान नानक दास तां कै कुर्बान आराम कली महला पंजवा सिंचै दर्ब देह दुख लोग तेरे काज ना अवरा जोग कर अहंकार होए वरतै अंध जम की जेवड़ी तू आगै बंद छाड़ विडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े माए माया कै माते तैं उठ चलना राच रहे हो तू संग सुपना रहाओ बाल व्यवस्था बार के अंध पर जोबन लागा दुर्गंध तृती व्यवस्था सिंचे माए बिरद भया छोड़।

सगल फला से सुख समाए, राखन हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ, जित लावे तित लागे स्वामी, नानक साहेब अंतर जामी। राम कली महला पंजवा, जोकश करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहेले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन मैं मानी, महापुरख का संग पया रहा। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जह राखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, आठ सठ तीर्थ जै साध भगत रै, तह बैकुंठ जै नाम उचरै, सर्ब आनंद जब दर्शन पाई है, राम गुणा नित नित हर गाई है, आपे कड़कड़ रया ब्याप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे, नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा, कोट जापता विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनक रूप रंग भोग रसै, गुरमुख नाम निमख हृदय वसै।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप शान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जानू अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

कर कृपाल पार ब्रह्म दयाल, मन ते कबो न विसर गोपाल, तेरे दास की हो मातूर, नानक की प्रभ सरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोय, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याय पूरा जिस कर्म, तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह

मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवे अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट तोट न आवे अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोल हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा महिमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरा आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा किशु काज न कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम। पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगंत जी का दाता जिसे जनामे तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस सगला राधे प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहेब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद। तारण तरण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचा पार सुमत सार।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। राम कली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान रखन हार निदान।

पेलो हर चरण कमलो सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करे बेकार जिया रे कह ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तोह अनक शर जान कौडी कौडी कौ खाक सिर शान जिन दिया तसेरा चेत मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जप हे दयाल इह मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै सा समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावत सा संग दुख जाए रहाओ जां कै राम बसै मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचे दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दस्त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की उपरगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख ना बिसरै जी भगतन कै आठ पहर मंता को जाप रहाओ प्रथमे मक

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवां, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावै अवरा, त्रिसना बुझै बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवां, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पिखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाई है साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवां, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाई, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक पाव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक आरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरे सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

हाँ मैं जाए शब्द कर लही रहाओ गण गण जोत कुकंडी कीनी पढ़े सुना मैं तत् न चीनी सब सही ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो ना सगली चार ना वै तो वै पूजै सैला बिन हर रातो मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ वाचै वादना वेद विचार है आप डुबे क्यों पितरा तार है घट घट ब्रह्म चीने जन को ए सतगुर मिले ता सो जी होए गणत गणी है सहसा दुख जी है गुर की शरण पवै सुखती है कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर बेटे पुरब कमाया गुर शरण ना आई है ब्रह्म ना पाई है परम पुलाई है जन मरियाई है जम दरबा दो मरै बेकार नारद नाम ना शब्दाचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावै दुबदारा ते महल ना पावै जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मदे को जन अपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख विरली।

की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रवते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहि सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तनि सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, कर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाय अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीनै, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावै बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम नीसो हेत वधाए, हे की नाम विसार है भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस नान ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागै नाम विसारियो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारै, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावै, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेश करै नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। एते उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करै बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखै, सागत मानो अभमान पाया। जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंत काल के साथ न चल, जो दी सह सब तिसै मया। आद पुरख परम्पर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवै किसै सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हार है बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। आराम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। साज शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनिस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना। मिलै गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखण ना जाई। दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिभवन ज्योत खाई। सच्चै तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, घट घट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मणि कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ, ममता मार हो मैं सोखै, त्रिभवन जो तुम्हारी। मनसा मार मने मैं राखै, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जो तुम्हारी। परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी। रव सस लौके हो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन अवधू, अलख गम्य पारी। काया नगरी हो मन राजा,
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਵਰਤੈ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਔਦੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਦੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਔਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਔਦੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਔਦੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸੋ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

पाखंडी। हुक्म बुझै सो जोगी कहिया, एक स्यों चित लाए, सहसा टूटै निर्मल होवै, जोग जुगत इव पाए। नदरी आमदा सब किश बिनसै, हर से ती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, ता एह सो जी पाए। एहो जोग ना होवै जोगी, जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै, ग्रह शरीर में हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करै जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जो जुगत सो पाए। जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों परम चुकाए। विण वजाए

मनसा मार मन सहे समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी, भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड़ियाई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर सच ऐ शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पह भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किश आपे आप वरतै, नानक नाम वड़ियाई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करै फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करै दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत्व बिचारी। आपे आप कराए

तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही, विचों आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, खुट सचे पंडारी। अपने भगता नो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिख बिचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे, बूझे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती, साचे नाए प्यारी। काया अमृत रही पर पूरे, पाइये शब्द विचारी। जो प्रभ खोजे से ही पावे, होर फूट मोए हंकारी। बादी बिन सह सेवक सेवै, गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हम मैं तृष्णा मारी। सतगुर दाता तने पछाता, जिसनों कृपा तुम्हारी। सतगुर ना सेवै माया लागे, डूब मुए अहंकारी। जिचर अंदर सास, तिचर सेवा कीचै, जाय मिलिए राम मुरारी। अन दिन जागत रहे दिन राती, अपने प्रेप्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कुमाई, अपने गुरविटों बलिहारी। माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी। आप जगाए सही जागे, गुर कै शब्द विचारी। नानक से ही मुए जे नाम ना चेतै, भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा, नाम खजाना गुरते पाया। तृप्त रहे आघाई संतो, गुरमुख मुक्त गत पाई। एक नाम वस्या घट

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरेबो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किन्ही किया परविरत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हाँ तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन

ज्यों पाव को संग सीत को नास, ऐसे प्रायत संत संग बिनास। ज्यों साबन कापर उज्जल होत, नाम जबत सब ब्रह्म पौ खोत। ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास। ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार। सब था

राम कली महला पंजवां जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवै सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवै प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सदगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसच लाए तराई। अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन न जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आदि जुगादि हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समर्थ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत का

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हरकंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रहो जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने। शंत हिम कर रुत मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो गृह आए हर कंत जियो। गृह लाल आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्रिपवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार। जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर। शंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो। हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरणी परे चरणी सर्ब गुण जगदीश्वरै। गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि कौआ देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महला पहला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर उतर पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तरे आपा जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया।

चेतन नित नीत चिंतित ही दिशा सब कोए चेता एक तही सुखोए चित वसै राचे हर नाए मुक्त भया पत स्यों कर जाए छीजे देह खुले एक गंड छे अन देखो जगहंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूछी जगत पुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजे जोबन जरुआ सिरकाल काया छीजे पही सिवाल जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यो पावे त्यों राखै राख जस जाचौ देवै पत साख जागत जाग रहा तुद पावा जा तू मेले ता तुझे समावा जय जयकार जपो जगदीश गुरमत मिलिया बीसा कीस चख बोलन क्या जग स्यों वाद चूर मरे देखे प्रमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पहे आस निरासा चोर चोर चख।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साच समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरिए तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाइए अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाइए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती सच है साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिय सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाने गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम जाए।

में पूला सब तीर्थ गहै, ओह तपा कैसे परमगत लहै। गुरप्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मोख अंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे हो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान, नानक सो तपा दरगै पावै मान। पौड़ी, रात दिन उपायन, संसार की वर्तन, गुरमति कट चानना अनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन, रविया सब वाण त्रिण। सब किश आपे आप है, गुरमुख सदा हर पाण। सब दे ही सोजी पई, सच्चे आप बुझाई,

अभ्यागत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदरे कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ल पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे।

आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजियान पाप गणत गणिनी, जिस बजाए सो बुझसी सच्चा शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो सहरत अपने तिन तन लोभ रत ना होए। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, जो बै संतर तात सुध होए। त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए, नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए। महला तीजा, आराम कली राम मन वसिया ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूपया जगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना शोभावंती नार, मन मुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार। बिन हर भगती सिंगार करै नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाए नी अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है दोह विच है संसार, चंगै मंदै आप लायन सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए, जे बहु तेरा लोचिया बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए, तन जमन मरण न चुकई हम मैं विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यो चित लाया सो खाली कोई ना है, तन जम की तलब ना हो वई ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे, पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै, आप नहीं चलिया चल है होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पावै, निज कर वासा पाई सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महल

एहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माण है सदा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवे घर आया, अजय सो रोवे पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवे दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवे पांडव पए मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवे जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी भया, रोवे शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे, गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है, आपे दे वड्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै। रतना परखण जाए, रतना सार ना जानई। आवै आप लखाए, महला दूजा। रतना केरी गुथली, रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रहा दुहा रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका, माणक बन जैसे। रतना सार न जानई, अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है, दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे,
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਕਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक हर प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हौ तिस सेवी हौ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायो।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मेले प्रीतम मोहे गुरपुरे में लाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है कोई ना किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देखे आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियां नो सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियां नो सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख गुरवण तेण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करे जिस पत रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै जिसै जराए आप सो ही अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सद बलिहार।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुरप्रसादी उतरै पार। जेह सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कह कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत। राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मनो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदिया ले चक्र पयंगा, पेटिया ले राय नसंगा, चूकिया ले मोह मयासा, सस्कीनो सूर गिरासा। जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा, भगतै भग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार। रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। रहाओ नीम्ब पयो आंब, आंब पयो नीम्बा, केला पाका चार, नालियेर फल से बरपाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड, रेत में बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पात ताज, चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मदे भरमी अले, पंच जना स्यो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले। रहाओ आनी ले कुंभ, भराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरीये, हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले। मंदिर एक द्वार दस जाके, गऊ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले। कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बारक राखी अले। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवत ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार में अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी राम गावो गो, सबदा तीता नहद राता, या कुल कहकर जाओ गो। रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो, चंद सूरज दो समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत ना सतावो गो। आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओ गो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावो गो। नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समाओ गो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया।
राम कोय न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै। उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी। मन कपट ना की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइए, कुंभ जौ केदार नाइए। गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै। राम नाम सर तऊ न पूजै, अस दान गज दान। सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै।

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद एड़ा पिंगला और सुख मना तीन बसाय कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहां निरंजन और मैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे शब्दा नाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै अमृत रस गगन अंतर पीजै एस कला जो जाने पेओ पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हृदय रह मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख है पांचो इंद्री बस कर रख गुर की साखी राख चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंद है मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरै सो निजर चरै जगंग नास्यो गोष्ट करै चौ मुख दीवा जो द्वार पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नाम गुहै मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

बाता तब कुशल खेम सब थियो सा संग नानक परगासियो आना ही रेबियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी तीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाओ तप्त बुजानी अमृत बानी त्रिपते जो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरा है संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर बिस्म पहे नानक जस गावत ठाकर गुनी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपै आप उधारियो आठ पहरो जन कै संग बसियो मनते नहीं बिसारियो रहाओ बरन चेहन नाही किछ पेखियो दास का कुल ना बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो सह सुभाए सवारियो महाबिखम अगन का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिकसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहयो कोट प्राद मिटैखन पीतर ताका दुख ना रहयो रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहयो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक अंध भयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाओ अंचला गहायो जन अपने को मन भी दो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रस उपजयो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा ने दो आना पेखो होरी नानक मेल लियो दा।

आठ पहर गुण गायन रहाओ। साधु तूर कर नित मजन सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निधान, कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरण सुख सागर नानक सद कुरबान। नट महला पंजवा हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ, मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत हर पाज जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगे मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनी अत मीठी ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे, धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे। सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे, सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हर जन मिल प्यारे, नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे, गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन सियाल जल संभाले बिख माया के बिस्थारे, आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने दर ठांडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे, जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए
ਨੱਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨੱਥ ਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਰ ਆਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਵੈ ਰਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ, ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਦੇਹ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਤੰਦੂਐ ਪਕੜ ਚਲਾਇਓ, ਕਰ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁ ਤਤ ਨੀਕੇ, ਮਨ ਸਰਦਾ ਕਰ ਹਰ ਧਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਦਾ ਭਗਤ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਨਕੀ ਪੈ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੇ, ਏਕ ਪੁਰਖ ਇਕ ਨਦਰੀ ਆਵੈ, ਸਭ ਏਕਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਸਭ ਚੇਰੀ ਜਗਤ ਸੁਮਾਰੇ, ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦੇਵੈ, ਵਿਚ ਪਾਥਰ ਕੀਰੇ ਕਾਰੇ। ਅੰਤਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਾਈ, ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਮਿਰਗ ਸਿੰਘ।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा कर।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उर तारे ओ जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता राम रसायन।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई है हर हर मन जपिया, हर जप माला जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेण न आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहु, हर मात पिता

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसे संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखे हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सोकियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा से ओ कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवां दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की न्यो पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ ले हो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर

प्रजापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहो कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गोतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवै नामा पहने कामा को ठाकर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जुनी सह पंगुर प्रसाद।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया।

तौ दीवाना जानिया जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देहे

अपने चलता। जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो। हवन दिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो। मारू महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा। एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूपयो पाया। शल बपरी कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगर समग्री डरै ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोहै दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण। परयो सरन द्वारे रहाओ, बालमीक सुपचारो तरयो। बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो। गतपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद। हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता। सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने। मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की। लीजै पुजा पसारे।

जिसका जास सुंत पवतरी है ता स्यो रंग न लाव सिरे। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सिरे। पयो प्रसाद कृपा निद ठाकर संत संग पत पाई। कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा जौ प्र पय सहाई। मारू महला पंजवां अंतर जामी सब जान तिस्ते कहां दुलारे हो। हस्त पाव चरेखन पीतर अग्न संग लह जा रहे हो। मूड़े तै मंते राम बिसारे हो। लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बेदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर टरत ना काहू टारे हो। प्रभ विसरत महा दुख पायो एहो नानक तत बिचारे हो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत। हर गुण गावे नीता नीत तिसबिन दूजा अवर ना को। वाद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार। नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करे अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करे अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कौ अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखै भोगै तब्त थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना पार ना परना जाए। काम क्रोध लो मोहे ब्यापे ओ नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन

सगले शलिया निर्भव निरंकार दयालिया जी जंत सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाड़ी गढ़ है एक है सुपन है दाम ना छड़ है राज कमाए करी जंथैली ताँ कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तजबा महतारी सुत मीत भरा ते गुहजी ताँ कह निकटना होई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके हर हर नाम बस्यो जीता कै साध संग पहे जन मुक्ते गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा सिमरो एक निरंजन सोऊ जाते बिरथा जात ना को मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया जियो पिंड दे साई सुवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब टकी है

पूर्णा त्रिप्त्यागाए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुरप्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंधप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसै बूझ जिंतू किया प्रभ करण करन एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

रहाओ। साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ, करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ। मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे, सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया। विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया, आवे जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया। मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया। मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई, एको सहाई राम है कीता जिसो होवै, पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है, आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है। भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा, हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो, गन काहू गत पाई रहाओ। पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई। मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई, सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई। जो संपत अपनी कर मानी छन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड पर्यो सिर उपर तब सुब तै जाग्यो, कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस।

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।